मैं इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माय लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या न माने।